वो मेराज की शब हरम पर न जाते तो चांद तारों का क्या हाल होता। मोहसिन अली खान साहब की मखसूस अंदाज में इन्होंने इस कलाम को पेश की थी। अल्हम्दुलिल्लाह, ब्यूटीफुल कलाम ऑन द नाइट ऑफ मेहराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी कहने वाले ने, शायद आप हमारे पंडित कालिका प्रसाद ने, बड़ी अच्छी बात कही है कि दहर से नूर चला और हरम तक पहुंचा, दहर से नूर चला और हरम तक पहुंचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा, और तेरी महराज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू कुर्बे माबूद तक पहुंचा, और मेरी महराज मैं तेरे कदम तक पहुंचा। तो आइए अब बारगाह है अली में चलते हैं, और वहां तक पहुंचाने के लिए आ रहे हैं नौशाद अली खान साहब।

वलियों के शहनशाह मेरे पीराने पीर है, और इसमें कोई शक नहीं है। आज दोज पीपल, आज दोज फ्रेंड्स, आज दोज दैट हैड गेट इनवाइटेड टू बगदाद शरीफ ऑन अ ईयरली बेसिस, एंड दे विल टेल यू देयर इज नथिंग बेटर देन बीइंग इन द दरबार हुजूर गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर अलै रहमा। शुक्रिया मेहरबानी इमरान एंड बीबी फॉर योर ब्यूटिफुल कमेंट्स। अल्लाह रब्बुल इज्जत ब्लेस यू ऑल, एंड आई एम श्योर दैट Alhamdulillah, the blessings of Baghdad, you'll have brought it to us in Durban as well, and also to all those that have been there. Yes, and our young man there, and that is our Hussein Jiva, Hussein Ismail as well. Shukriya, my boys. Alhamdulillah, it's good to hear when the young ones are also growing up out there. Ismail Khan, Cape Town ke rehne wale hai. Aslam Suleiman as well of Cape Town. And listening to us this evening is Janab Haji Muhammad Noordin and my son Fakir Abdurrahman Noordin of the Khwaja Aminuddin Foundation of South Africa. KAFSA, as they are popularly known. Shukriya Jazakallah for tuning in. And also listening to me is a young man, Hafiz Hifayatullah Sahab. Yes, a very talented Sana Khan Rasool, an ex-Durbanite who is these days, of course, a resident in Gauteng, together with his wife Farzana, and that is Hafiz Kifayatullah and Farzana Bobat. Shukriya, ye maploki muhabbat hai. Abbas Sheikh as well, Farooq Khan, Abbas Sheikh of North Beach, Farooq Khan of Peter Mansberg, and saath hi saath jitni bhi hamare jo chahne wale hai ya aap hazrat ki muhabbat hai, to aaiye ab program ko aage badhate hai. But before that, let's हमारी की रंगीन शाम है, और ये शाम आपके नाम आप इबी महमूद के साथ है। मैं आपका मेजबान हूँ। Yes, you are with Ibi Mahmood, और कवाली की रंगीन शाम है। किसी कहने वाले ने बड़ी अच्छी बात कही है कि ए फलसफी न बात कर मुझसे फजूल की, ए फलसफी न बात कर मुझसे फजूल की, कहता रहूंगा बात हमेशा उसूल की, और फतवे का डर है न मुझे सूली का डर, फतवे का डर है न मुझे सूली का डर, क्योंकि बगदाद से तो आती है खुशबू रसूल की। ऑल्सो लिसनिंग टू अस दिस इवनिंग इज जनाब नजीर मलिक एंड नसीमा मालिक। ये शुक्रिया टू नजीर एंड नसीमा मालिक एज वेल। तो लीजिए बिल आखिर में आई एम गोना बी प्लेइंग अ कलाम ऑन बाबा फरीदुद्दीन मसूद शकर गंज अलैहि रहमा। और हमारे एक दोस्त है माशाल्लाह, ये बाबा फरीदुद्दीन के दीवाने हैं, और मेरा इशारा है जनाब महमूद शेख चिश्ती पीर मैरिजबर्ग के रहने वाले हैं, एंड ऑल द मलंगदार जयस्त इमरान मलंग एंड हिज टीम एज वेल, खास आप लोग के लिए। और जहां तक मेरा सवाल है, जिंदगी ने अगर हमसे वफा की तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक जिंदगी को संभाल के रखना, जिंदगी मौत की अमानत है। फी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज। ज्वाइन मी ऑन वेंसडे इवनिंग फॉर गुलदस्ता एट 6 PM। खुदा हाफिज।